ना तुमने जो जिम दिखा वो मी गादे मा खाओ या मा खाओ ये दोले ने गिर गिर रहता रही नहीं दा खाओ दा आसान है ना मान जालम लांग बेले दुबारे लिखा माँ उमाए उखला थारे ले ले मामा देवी पसाजी